0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m.
1: City
2: FM
1: 89.
3: Sound of your city. City FM 89.
4: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
5: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
4: मुबारक हो, यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
1: सिटी एफएम 89.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
4: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
5: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
4: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
5: जो तुम चाहो,
4: डाउनलोड दी ऐप नाउ.
0: City FM 89 sounds different.
6: Due to unavoidable circumstances, the venue for Breathe Pakistan International Climate Change Conference 2026 has been changed. The conference, originally scheduled to be held at the Jinnah Convention Center on May 6th and 7th, 2026, will now take place on the same dates, May 6th and 7th, 2026, at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad. The organizers regret any inconvenience caused and appreciate your understanding and continued interest. See you all in Islamabad.
7: Breathe Pakistan.
8: A Dawn Media Initiative.
7: Let's weather the change
8: together.
6: Principal Partners, United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting Partners, Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
9: Event Partner, Jump Activations.
0: City FM 89 sounds different.
10: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
11: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
12: City FM 89, we're playing your song.
13: Everybody go!
1: You're listening to
14: Non-Stop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City
5: FM 89.
0: Coming up next.
1: Full disclosure.
6: FM 89.
7: Trending today.
8: Pop star Olivia Rodrigo has achieved her fourth Billboard Hot 100 number one single with the debut of her new song Drop Dead.
9: Is cricket season easy paisa de raha hai brand new Honda City. बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर, अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें।
2: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
3: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस, जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
4: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
3: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
4: जो तुम चाहो,
3: डाउनलोड दी ऐप नाउ।
5: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
6: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: Mubarak ho! Ufone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
7: सिटी एफएम 89।
8: इफ यू आर स्टक इन ट्रैफिक राइट नाउ, इमेजिन डिचिंग दिस नॉइज एंड लैंडिंग इन अ रूम वेयर इट्स जस्ट म्यूजिक एंड पीपल एक्चुअली लिसनिंग। दैट्स लिटरली व्हाट महफिल इज ऑल अबाउट। इट्स नॉट अ कॉन्सर्ट, इट्स इंटीमेट, ऑथेंटिक एंड मोस्ट ऑफ ऑल इट्स इंटरएक्टिव। They're calling it Mehfil, and honestly, sounds like something we need right now. Farhan Saeed and Call the Band are performing alongside the LLMC Ensemble, a rubab orchestra from Hunza. Nostalgic sounds and songs reimagined in a way that has never been heard before. Happening on 8th May in Karachi, 16th May in Islamabad, and 23rd May in Lahore. City FM 89, exclusive radio partners.
9: You're listening to City FM 89.
8: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
10: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
11: Breathe Pakistan,
12: a Dawn Media initiative.
11: Let's weather the change
12: together.
13: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC, and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan, and Bank of Punjab. Knowledge Partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner: Serena Hotels. Airline Partner: AirBlue. Connectivity Partner: Zong 5G. Tea Partner: Vital Tea. Coffee Partner: Cinnabon.
14: Event Partner: Jump Activations. 89.
15: We're playing your song.
16: Hello, hello, Pakistan, and a very happy Sunday. You are tuned into Full Disclosure on City FM 89 with me, your host, Saba Bano Malik. Whoa, let's try that again. Hello, everybody. Happy Sunday. You are tuned into Full Disclosure on City FM 89 with me, your host, Saba Bano Malik. Let's kick it off with some Drake. Here he is with Signs.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali naami scheme aur mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare.
3: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
2: मुबारक हो, यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
5: अवेल फ्लैट 30% ऑफ एट द डाइनर्स ग्रेट फेस्टिव सेलिब्रेशन. हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी. बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका. इजी पैसा डिजिटल बैंक. Easy Wala Bank.
7: Ever thought climate change could take food off our plates? Floods and droughts are destroying farms across South Asia, leaving families hungry and children malnourished.
8: Breathe Pakistan.
9: A Dawn Media Initiative.
8: Let's weather the change
9: together.
2: Mubarak ho. Youfone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
10: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
11: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक. यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
12: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
11: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
12: जो तुम चाहो.
11: डाउनलोड द ऐप नाउ.
13: Due to unavoidable circumstances, the venue for Breathe Pakistan International Climate Change Conference 2026 has been changed. The conference, originally scheduled to be held at the Jinnah Convention Center on May 6th and 7th, 2026, will now take place on the same dates, May 6th and 7th, 2026, at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad. The organizers regret any inconvenience caused and appreciate your understanding and continued interest. See you all in Islamabad.
8: Breathe Pakistan.
9: A Dawn Media Initiative.
8: Let's weather the change
9: together.
13: Principal Partners, United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting Partners, Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation, and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
14: Event Partner, Jump Activations.
15: City FM 89.
16: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
17: That was Normani with Fair. Up next, major throwback. Here is Beanie Man and Janet Jackson with Feel It Boy.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
3: Exactly.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
3: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
4: सिटी एफएम 89
1: कराची, आर यू रेडी? ट्राईवा इवेंट्स प्रेजेंट्स अ नाइट दैट ट्रांसेंड्स म्यूजिक।
5: तुझको खबर ही नहीं।
1: This isn't just a performance, it's a soul-stirring takeover. Witness global superstar Atif Aslam live as he brings his legendary energy to stage on 8th May 2026 at the Moin Khan Academy DHA Phase 8. Get your tickets now from Ticketwala. City FM 89, exclusive radio partners.
6: City FM 89, we're playing your song.
7: Climate change in Pakistan is no longer a distant headline. It's in our flooded streets, our longer, hotter summers, our unpredictable seasons. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
8: Breathe Pakistan,
9: a Dawn Media initiative.
8: Let's weather the change
9: together.
2: City FM 89, we're playing your song.
7: You're listening to
1: Non-Stop Hits.